0: सबै राम्रो सधैँ हाम्रो रेडियो संखुवा सभा 95.5 मेगाहर्ज सधैँ सुन्नु होला।
1: रिमा इन्टरटेनमेन्ट नेपाल

माफी चाहिए तले माफी चाहिए माफी चाहिए तले माफी तो अब कहीं आवाज़ नहीं चली जाएगा।